0: बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

0: मन वल्लो पाया न्यूदा दूना मोड़ा है
1: इस वड़न जो नपान तेल कमाया तू जाने
0: हरिमंदर ते की कहर कमाया।